0: फिर एक दिन जंगल में चिड़ियों का शिकारी घुसाया। चिड़ियों को पता नहीं था शिकारी ने जाल बिछाया था।
1: उई मां, फिर क्या हुआ? चिड़िया पकड़ी गई क्या?

प्रमुख लिंगित साहित्य रोशन क्रास मुखलिंगित साहित्य रोशन क्रास्तानी लॉयड रेगो संगीत विनिल वेगस गैलेले जावनसात प्रज्योत डेसा गीत उड़ी उड़ी

लोकलिंगीत, साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैलेले जमनसाथ प्रज्योत डेसा, गीत उड़ी उड़ी।